0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: आ गले लग जाओ मेरे यार, तुम्हारा ही इंतजार है. दिल को बेहद तुमसे प्यार.

0: SBS South Asian.
1: हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर है

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS हिंदी पर आपका स्वागत है एक नए शो में, एक नई शाम. मेरा नाम है नबील और शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंचुरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, सबसे पहले उसके बारे में आपको बता दिया जाए. आज के शो की शुरुआत होगी ऑस्ट्रेलिया के हाल ही में आए फेडरल बजट से, जहां पैसेंजर मूवमेंट चार्ज को बढ़ाकर $80 करने का फैसला लिया गया है. समझेंगे कि इसका असर ट्रैवलर्स और आपकी नेक्स्ट फ्लाइट पर कैसे पड़ेगा. इसके बाद बात होगी मॉडर्न पीथियन गेम्स की. ये एक ग्लोबल कल्चरल इनिशिएटिव है जो खेल के साथ साथ आर्ट और कल्चर को भी एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसे अब भारत के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कोशिश करी जा रही है इसके आयोजन करने की. और हाल ही में जो इनके अधिकारी हैं, जो टीम हैं, वो मेलबर्न आए थे और अब मेलबर्न में इसे होस्ट करने की कोशिश की जा रही है. फिर मिलवाएंगे आपको मेलबर्न के जयंत पांडे से, जिन्होंने अपने कैमरा और फोटोग्राफी के पैशन के जरिए क्रिएटिव दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. जानेंगे उनके सफ़र के बारे में. और अंत में आज होगी फैसल फरीद की रिपोर्ट, जिसमें वो लेकर आएंगे मुंबई से एक बड़ी दिलचस्प कहानी, जहां एक शख्स पैसे लेकर लोगों की बातें और उनके दुख सुनते हैं. सुनने में अलग लगने वाला ये आइडिया आज लोगों को इमोशनल सपोर्ट देने का एक नया तरीका बनता दिख रहा है. तो ये रिपोर्ट हम आपके लिए शो के अंत में प्ले करेंगे और कई सारे गाने आएंगे आपके लिए और आपके मैसेजेस का भी हमें इंतज़ार रहेगा. 04397997667 हमारा नंबर है. आप अपना संदेश अपने नाम के साथ ज़रूर लिख भेजिए. चलिए ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी एक एक करके, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं न्यूज़ फ्लैश, जिसमें है आज की ताज़ा खबरें. मंगलवार 19 मई की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. सिडनी में सोमवार रात एक घर से दो बच्चों और एक महिला के शव मिलने के बाद एक व्यक्ति पर तीन हत्या के आरोप लगाए गए हैं. वो व्यक्ति फिलहाल हिरासत में है. सोमवार रात करीब 8 बजे कैंपबेल टाउन में एक घर पर पुलिस को बुलाया गया, जहां उन्हें दो बच्चों और एक महिला के शव मिले. पुलिस ने मौके से 47 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि उस व्यक्ति की किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या की कोई जानकारी नहीं है. न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस ने कहा है कि सिडनी में हुए ट्रिपल मर्डर के बाद डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन के लिए अतिरिक्त फंडिंग से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने इस घटना को एक शॉकिंग क्राइम बताया और कहा है कि लोग इस घटना से गुस्से और गहरे दुख में हैं और उनकी भावनाएं पूरी तरह से सही हैं. फ्रंटलाइन सर्विसेज ने मांग की है कि उनके काम की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक फंडिंग दी जाए. क्रिस मिंस ने कहा है कि बेल लॉज में किए गए रिफॉर्म्स का उद्देश्य मदद करना है और पुलिसिंग तथा फ्रंटलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए पहले ही अतिरिक्त फंडिंग दी गई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर और क्या किया जा सकता है इस पर भी विचार किया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने कहा है कि अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं ताकि अफ्रीका में कुछ हिस्सों में इबोला आउटब्रेक पर ऑस्ट्रेलिया की रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी पर चर्चा की जा सके. इस बीच अमेरिका ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और साउथ सूडान से आने वाले लोगों पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की घोषणा की है. ये बैन 30 दिनों का होगा और अमेरिकी नागरिकों या परमानेंट रेसिडेंट्स पर लागू नहीं होगा. स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ प्रोटेक्शन कमेटी ने कल देर रात बैठक की थी और आज एक समूह जिसमें फॉरेन अफेयर्स और बॉर्डर फोर्स शामिल हैं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक करेगा. ऑस्ट्रेलिया ने एल्बनीजी सरकार और चाइना के बीच हुई बातचीत के बाद 6 लाख से अधिक फ्यूल बैरल सुरक्षित कर लिए हैं. इसके अलावा ब्रुनेई से 38,500 टन यूरिया, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, की अतिरिक्त आपूर्ति भी की जाएगी. प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी और चाइना के प्रीमियर ली चियांग के बीच हुई बातचीत वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच ईंधन आपूर्ति को मजबूत करने के कई उपायों का हिस्सा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गल्फ कंट्रीज के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर नए हमले को फिलहाल रोक दिया है। ईरान ने गल्फ देशों को चुनौती दी है कि अगर अमेरिका और इसराइल फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करते हैं और लगभग 6 हफ्ते से चल रहा सीजफायर खत्म होता है तो वो जवाबी हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति दोनों ने पुष्टि की है कि बातचीत जारी है। पाकिस्तानी मीडिएटर्स ने अमेरिका को ईरान की शर्तों की सूची सौंपी है। तेहरान ने सैंक्शंस हटाने, फ्रोजन एसेट्स जारी करने और जंग के लिए मुआवजे की मांग की है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की बात भी दोहराई है। और अब खबर भारत से। आज मंगलवार को भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। ये एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ था। कीमतों में इस ताज़ा बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल 98.64 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.58 रुपए प्रति लीटर पहुँच गया है। देश में ईंधन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव और डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति के आधार पर तय होती हैं। सरकारी तेल कंपनियां डेली प्राइस रिवीजन यानी डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम के तहत हर दिन नए रेट जारी करती हैं। उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में टैक्स और कई और लागतें भी जुड़ जाती हैं। यह था आज का न्यूज़ फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ फ्लैश के बाद आइए बढ़ते हैं आज की पहली रिपोर्ट की तरफ। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने फेडरल बजट पेश किया जिसमें यात्रा से जुड़े कुछ अहम बदलावों की घोषणा की गई। अब अगले साल जनवरी से पैसेंजर मूवमेंट चार्ज यानी PMC को फिर से बढ़ाया जाएगा जिससे ये बढ़कर अब $80 हो जाएगा। इस रिपोर्ट में आइए समझते हैं कि ये शुल्क क्या है, किसे इसका भुगतान करना होगा और इसका असर यात्रियों पर कैसे पड़ेगा। पैसेंजर मूवमेंट चार्ज पर यह है नताशा कॉल की रिपोर्ट।
3: नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। इस साल फेडरल बजट में ऑस्ट्रेलियाई यात्रियों को प्रभावित करने वाले एक लंबे समय से चले आ रहे अप्रत्यक्ष कर में बढ़ोतरी की गई है, यानी बजट में विदेश यात्रा महंगी की गई है। अगले साल जनवरी से ऑस्ट्रेलिया छोड़ने वाले हर यात्री को पैसेंजर मूवमेंट चार्ज यानी यात्री आवागमन शुल्क के तहत $10 अतिरिक्त चुकाने होंगे जिससे यह शुल्क $70 से बढ़कर $80 हो जाएगा। पिछले हफ्ते पेश किए गए बजट के बाद ये नई दर ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और विदेशी पर्यटकों दोनों पर लागू होगी। 1995 में जब यह शुल्क $27 था तब से अब तक इसमें लगभग 200% की बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि सरकार ने इस कदम को राजस्व बढ़ाने के उपाय के तौर पर पेश किया है लेकिन टूरिज्म और एविएशन इंडस्ट्री इससे खुश नहीं है। उद्योग संगठनों का कहना है कि बढ़ा हुआ शुल्क लोगों को विदेश यात्रा बुक करने से हतोत्साहित कर सकता है जिससे पर्यटन और उससे जुड़े खर्च पर असर पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में पर्यटन क्षेत्र से आय बढ़ाने के लिए इसी तरह के शुल्क लगाए जाते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया का प्रस्थान कर पहले से ही दुनिया में सबसे ऊंचे शुल्कों में गिना जाता है। ऐसे में 14.29% की ये नई बढ़ोतरी यात्रियों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब एयरलाइंस पहले ही बढ़ती ईंधन लागत से जूझ रही है। पिछले एक साल में तेल की कीमतों में करीब 60% की वृद्धि हुई है जबकि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बाद सिर्फ मार्च महीने में ही इसमें 12% की तेज उछाल दर्ज की गई है। क्वांटस और वर्जिन जैसे बड़ी एयरलाइंस पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि बढ़ी हुई ईंधन लागत का बोझ अंततः यात्रियों पर ही डाला जाएगा। तो पैसेंजर मूवमेंट चार्ज आखिर क्या है, इसे और बेहतर समझने के लिए हम जुड़ रहे हैं ट्रैवल एक्सपर्ट नीरव कोटक से। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
4: ये मेरा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड ये पर्टिकुलर जो एक चेंज हुआ है जिसको हम लोग इंडस्ट्री में बोलते हैं PMC व्हिच इज पैसेंजर मूवमेंट चार्ज, जो एक तरीके का टैक्स है कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करें हम लोग, तो अगर वो बाय फ्लाइट हो गया या बाय क्रूज हो गया, पैसेंजर मूवमेंट चार्ज कोई भी, जैसे आप ट्रैवल बाय करते हो, जैसे एयरफेयर हो गया आपका या क्रूज का टिकट हो गया, तो उसमें आपका वो कॉस्ट इंक्लूडेड होता ही है बाय डिफॉल्ट। तो जनवरी 2027 से क्या हो रहा है कि जो पहले, जैसे एज एन एग्जाम्पल, आपका जो टोटल जो भी कॉस्ट था पीएमसी का सेगमेंट, वो था लेट्स से अबाउट $70 के करीबन था, अभी वो जाके $10 इंक्रीज हो रहा है, मेकिंग इट टू $80 पर पर्सन। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, तो अगर आप फैमिली ऑफ फोर है, तो आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है बाय $40, विच इज $10 पर पर्सन के हिसाब से।
3: नीरव जी, ये बताइए कि क्या ऐसे भी यात्री होते हैं जिन्हें ये पैसेंजर मूवमेंट चार्ज नहीं देना पड़ता है?
4: अगर ट्रांजिट पैसेंजर है, ट्रांजिट पैसेंजर की डेफिनेशन अगर बताएं कि जैसे अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में ट्रांजिट कर रहा है विच इज लेस देन 72 आवर्स, और ट्रैवल कर रहा है लेट्स से आगे न्यूजीलैंड जा रहा है या यहाँ से जा रहा है वापस वहां यूएस या एशिया कोई भी, तो अगर ट्रांजिट पैसेंजर है उनको वो टैक्स में इम्पैक्ट नहीं होता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में वो एंट्री नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई जैसे गवर्नमेंट या डिफेंस ट्रैवलर्स है, तो उनके लिए वो इम्पैक्ट नहीं करता है। एंड अगर कोई टेक्निकल स्टॉप होता है, जैसे कोई फ्लाइट में कोई इंसिडेंटल कुछ होता है, तो उसकी वजह से अगर फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया में लैंड करती है कोई भी एयरपोर्ट पे, तो उस केसेस में
3: जो नया $10 शुल्क बढ़ा दिया गया है, तो ये जो नया चार्ज है वो लागू कब से होने वाला है?
4: ये बढ़ रहा है जनवरी 2027 से। करंटली जो उसका है टैक्सेस वो है $70 पर पर्सन, और वो इंक्रीज होके बट $80 के करीबन वो होने वाला है।
3: नीरव जी, ये बताइए इस चार्ज के बढ़ने से टूरिज्म इंडस्ट्री पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, यात्रियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है?
4: लुक, मैं जनरली एज अ ट्रैवल एजेंट अगर मैं बात करूं या एज अ टूरिज्म ऑपरेटर एंड स्टफ, राइट, तो कंज्यूमर के लिए एज सच कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एक्सेप्ट फॉर कि कॉस्ट इंक्रीज हुई है। बट कभी भी आज तक मेरे अबाउट 18 इयर्स के करियर में किसी ने नहीं पूछा है कि टैक्स का बाइफर्केशन क्या है। तो पीएमसी जैसे पैसेंजर मूवमेंट चार्जेस, एज सच एज अ लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें, तो किसी को ऐसे इतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज उनके लिए सिर्फ एक ही चीज है कंपल्सरी, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ द बिजनेस एंड द कंज्यूमर, एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर हम लोग उससे अगर ऑन अ ब्रॉडर स्कीम अगर बात करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। बिकॉज अगर हम लोग बात करें कि अगर आप कोई फैमिली अगर ट्रैवल कर रही है कि जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी है और क्रूजेस भी इंक्लूडेड है, कि जैसे यूरोप में क्रूज हो गया या यूएस में या कनाडा में क्रूजेस हो गए, तो अगर आप देखिए उस हिसाब से, तो पर पर्सन आपका जो इंक्रीज हो रहा है वो एटलीस्ट $40 के करीबन हो रहा है पर पर्सन। सो अगर फैमिली ऑफ फोर, इट मीन्स अबाउट $160, तो काफी मायने रखती है बिकॉज कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है उसमें।
3: तो क्या लग रहा है आपको कि इसके बढ़ने से क्या यात्रा कम होगी, लोग कम ट्रैवल करेंगे?
4: मेरा मानना है कि वो ज्यादा ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोग कभी करंट सिचुएशन की बात करें, जो वर्ल्ड वॉर तो नहीं बोल सकते उसको, बट जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है वेस्ट एशिया के, तो उसकी वजह से एयरफेयर जो है वो सर्टन सेक्टर्स में ऑलरेडी हाइक हो चुका है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपका कॉस्ट जो पहले फॉर एग्जांपल $1500 था, अभी $1510 होगा, वो हार्डली इट विल मैटर टू एनीवन, जो मेरा पर्सनली मानना है, बिकॉज इंक्रीज जो है वो सिर्फ $10 का है, वो इतना ज्यादा भी नहीं है
5: जी।
4: तो मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि उससे ज्यादा कोई इम्पैक्ट आएगा
3: जी। और ये भी बताइए कि ये चार्ज यात्रियों को देना क्यों पड़ता है?
4: पैसेंजर मूवमेंट चार्ज इज कोई भी जैसे ट्रैवल करता है, राइट, तो हम लोग सारे एयरपोर्ट फैसिलिटीज वो सारी चीजें यहाँ पे यूज करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो वो टैक्स डायरेक्टली रिलेटेड उसी के लिए है, जो गवर्नमेंट की एक एडिशनल इनकम है वहाँ पे, उसमें वो ऐड होता है।
3: आपको बता दें, पैसेंजर मूवमेंट चार्ज एक तरह का निकास कर है, जो कुछ विशेष लोगों को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया छोड़ने वाले लगभग हर यात्री पर लगाया जाता है। ये शुल्क हवाई और समुद्री दोनों माध्यमों से यात्रा करने वालों पर लागू होता है। ये शुल्क आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकट की कीमत में शामिल होता है, इसीलिए अधिकांश यात्रियों को इसका भुगतान टिकट खरीदते समय ही करना पड़ता है, हालांकि ये अक्सर रसीद में अलग से दर्ज किया जाता है। इस कर से छूट पाने वाले व्यक्तियों में शामिल हैं 11 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, विदेशी सैन्यकर्मी और एयरलाइंस कर्मचारी। इसके अलावा अगर किसी कारणवश यात्री अपनी निर्धारित यात्रा पर रवाना नहीं हो पाता, तो कई परिस्थितियों में उसे इस शुल्क की रिफंड यानी वापसी पाने का अधिकार भी होता है। ये जानकारी सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। पैसेंजर मूवमेंट चार्ट से जुड़े नियम, छूट और रिफंड की पात्रता व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यात्रा से पहले नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी और एयरलाइन सूत्रों से पुष्टि अवश्य करें।
2: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील और अभी अभी आपने सुनी नताशा कॉल की रिपोर्ट पैसेंजर मूवमेंट चार्ज को लेकर, जो यात्रियों के लिए बढ़ गया है $10 से, और अब जनवरी आने वाले महीने, आने वाले साल के जनवरी महीने से वो $80 हो चुका है। अगर आप ये पॉडकास्ट एक बार फिर से सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक ऐड ब्रेक लेंगे, लेकिन ऐड ब्रेक जाने से पहले आज का सवाल। आज का सवाल बहुत सिंपल है और बहुत नॉस्टैल्जिक है। अगर कहा जाए कि पूछना, हम आपसे ये चाह रहे हैं कि आपके पास वो कौन सी बचपन की चीज़ है या याद है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, वो कौन सी चीज़ है बचपन की जो आप मिस करते हैं, जैसे कि गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना या फिर रातों को छत पे सोना, और भी कुछ हो सकता है जैसे शाम में सूरज ढलने तक खेलते रहना और जब तक वो आवाज़ ना आ जाए घर से कि वापस आ जाओ, अंधेरा हो गया है तब तक खेलना। 04397997667 हमारा नंबर है। आपकी बचपन की वो कौन सी खूबसूरत याद है जो आप मिस करते हैं, हमें मैसेज करिए और आज सबके साथ शेयर करेंगे। अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। चलिए एक एड ब्रेक लेते हैं और जब तक आपके संदेश आते हैं मैं आपको मिलता हूँ इस एड ब्रेक के बाद।
5: SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं। अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं। जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं। आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
6: इनसाइड SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर। SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
7: I'm Janice Peterson from SBS World News, and I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
8: SBS Learn English helps Australians speak, understand, and connect.
2: SBS हिंदी पर हमारे साथ वापस फिर से जुड़ने के लिए एक बार शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी रिपोर्ट की तरफ, लेकिन दूसरी रिपोर्ट से पहले जो हमने सवाल एडब्रेक से पहले पूछा था एक बार दोहरा देता हूं कि बचपन की वो कौन सी चीज़ है जो आप बहुत मिस करते हैं या याद करते हैं। अब वो छोटी सी छोटी चीज़ भी हो सकती है जो बहुत खुशियाँ देती थी, जैसे कि गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना या फिर सूरज ढलने तक शाम में बाहर खेलना, और या फिर शायद अपना टिफिन शेयर करना स्कूल में अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ। 04397997667 हमारा नंबर है। अपना जवाब भेजिए, अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, और जब तक आपके मैसेजेस आते हैं बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुसांस्कृतिक समाजों में कला, संस्कृति और परंपरा को एक साथ जोड़ने वाली एक अनोखी वैश्विक पहल चर्चा में है और इसका नाम है मॉडर्न पीथियन गेम्स। इसमें खेल के साथ साथ अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियों को एक ही मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है और इसे मेलबर्न में आयोजित करने की भी कोशिश हो रही है। क्या है ये गेम्स, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर से प्रतिभागियों को एक ही मंच पर लाया जा सकता है, जहां मेहंदी प्रतियोगिता से लेकर स्टैंड अप कॉमेडी, रील बनाने से लेकर पारंपरिक संगीत और नृत्य जैसे आयोजन एक साथ किए जा सकें? और जब बात हो भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुसांस्कृतिक समाजों की, तो ऐसे प्रयास और भी खास बन जाते हैं। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मेरा नाम है नबील हसन। आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीथियन गेम्स के बारे में, एक ऐसा प्रयास जो खेल के पारंपरिक दायरे से आगे बढ़कर कला और संस्कृति को एक साथ लाने की कोशिश करता है। इस विषय में और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विजेंद्र गोयल जी, जो मॉडर्न पीथियन गेम्स के संस्थापक हैं। हाल ही में वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी थे, जहां मेलबर्न में इन खेलों के आयोजन को लेकर बातचीत हुई है।
9: नमस्कार ऑस्ट्रेलिया।
2: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि पीथियन गेम्स का इतिहास क्या है और इसका प्राचीन ओलंपिक से क्या संबंध रहा है।
9: हमने मॉडर्न पीथियन गेम्स को, जो विश्व के सबसे पुराने कल्चरल गेम, जो सांस्कृतिक खेल होते थे, जिनको 394 ईस्वी में बंद कर दिया गया था ओलंपिक खेलों के साथ ही, इन खेलों का ग्रीक इतिहास ही है जो ओलंपिक का इतिहास है। और ऐसा माना जाता है कि पीथियन गेम्स से ही ओलंपिक का कॉन्सेप्ट निकला। कभी इसमें कला, संस्कृति, पारंपरिक खेल, मार्शल आर्ट और इस तरह इन सभी चीज़ों को मिला के इन सभी खेलों को, जिनका अभी कोई वैश्विक प्लेटफॉर्म नहीं है, इसको एक मंच पर लाने का प्रयास मॉडर्न पीथियन गेम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दो टाइप के हमने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके रीच पहुँच सके, लोग ऑनलाइन प्रोसेस से भी अपने आप को रजिस्टर कर सकें और फिर वो ऑफलाइन इवेंट्स में कम्पीट कर पाए। तो हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक जो हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे कलाकार हैं, जो हमारे इंडिजनस गेम्स हैं, ट्रेडिशनल गेम्स हैं, उन सबको हम एक मौका दे सकें और उनको किसी भी लेवल पे खेलने का अधिकार उनको हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं।
2: इतने वर्षों बाद मॉडर्न पीथियन गेम्स को दोबारा शुरू करने का विचार कैसे आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई?
9: देखिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। संसार जब कोविड में जब सब कुछ बंद पड़ा था और हमारे आर्टिस्ट लोग, हमारे जो खिलाड़ी लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो हम भी उसको पढ़ रहे थे और उसी समय हमारे दिमाग में एक विचार आया कि हम लोग क्या इन लोगों के लिए कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप आज आप बात करें स्पोर्ट्स में, बहुत ओलंपिक के माध्यम से, क्रिकेट के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा एक्सपोजर है, लेकिन हमारी कला में, संगीत में, नृत्य में, कविता में, लोक संस्कृति में, पारंपरिक जितने हमारे खेल हैं और जो हमारी रचनात्मक जो प्रतिभाएं हैं जिनका, उनको उतना वैश्विक जो इंटरनेशनल लेवल पे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती है। तो मैंने ये प्रयास किया कि इन सबको हम लोग मॉडर्न पीथियन गेम्स के माध्यम से एक मंच प्रदान करें और उनको फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के साथ उनको हम लोगों ने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को अडॉप्ट किया, क्योंकि हमारी जो परंपराएं थी, जो हमारे पारंपरिक खेल थे, वो भी आज कुछ खेल तो हमारे खो गए हैं सदा के लिए, कुछ खोने के कगार पे हैं, जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको उनके बारे में पता नहीं है। तो एक विचार ये था कि उसकी तरह से हम अपनी कला को, अपनी संस्कृति को हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं और इस तरह के कंपटीशन हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे करवा के ना सिर्फ भारत के बल्कि अलग अलग देशों के, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बात करें तो जो एबोरिजिनल हमारे जो यहाँ पे हजारों साल से जो एक कम्युनिटी यहाँ रह रही है, जो यहाँ के जो जिसने यहाँ की कला को जीवित रखा है, उस कला को भी इंटरनेशनल लेवल पे हम एक्सपोजर दे सकें।
2: इन खेलों में आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में ऑनलाइन फॉर्मेट भी रखा है, ये कैसे काम करता है और दुनिया भर के प्रतिभागियों के लिए ये कितना बड़ा अवसर है और इसमें किस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं?
9: जब ये गेम्स अनाउंस करेंगे तो पूरे विश्व से लोग ऑनलाइन उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन होने के क्लोज होने के बाद उनका उसी लेवल पे मॉनिटरिंग होगा, उनके कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, उनमें से लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, नेशनल लेवल पे टीम सिलेक्ट होंगी, उसमें हमारी फिजिकल बॉडीज हैं, हम बना रहे हैं हर देश में, कुछ में बन चुकी है, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोग एक ऐसा संगठन तैयार करने पे विचार कर रहे हैं। तो उस ऑनलाइन माध्यम से हमारी कोशिश है कि जो हमारे गेम्स हैं, जिसमें अगर आप आर्ट में बात करें, आर्ट की कैटेगरी में तो डांस है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, पोइट्री, ऐसे बहुत सारे इवेंट हमने निकाले हैं। और हम जो लोकल, जैसे मान लिया ऑस्ट्रेलिया में कल ये गेम होते हैं, तो यहाँ के लोकल क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या यहाँ की कल्चर है, उसको हम इवेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर आप अगर स्पोर्ट्स की बात करें, इंडिजिनस गेम्स की, तो हमने जैसे इंडिया में इंडिया के बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम्स को, जैसे पिट्ठू की आप बात करें, आप आर्म रेस्लिंग की अगर आप बात करें, हमने बहुत सारे टग ऑफ वार है, मड रेस्लिंग है, मलखम्ब है, थांग था है, और ताइक्वांडो कराटे मार्शल आर्ट्स में हम लोगों ने कलारी पाइतू को हमने लिया। इस तरह बहुत सारे करीबन 30-35 हमने ट्रेडिशंस में, अगर कल्चर की बात करें तो हमने रंगोली को वहाँ पे लिया था, हमने रंगोली के अलावा जो हम लोग मेहंदी हमारी जो होती है, जिसको आप हीना भी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे हमने कंपटीशन कराए। तो आप बेंगलोरी गेम की बात करें तो करीबन 35 हमने आर्ट कल्चर और ट्रेडिशनल गेम्स के कन्वीत कंपटीशंस को वहाँ ऑर्गेनाइज किया था, सेम्बो रेसलिंग वहाँ हुई थी। मैं समझता हूँ इसके प्रति बच्चों का रुझान अब बहुत बढ़ता जा रहा है और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है।
2: बिजेंद्र जी, आप हाल ही में ऑस्ट्रेलिया आए और खासकर मेलबर्न में इसके आयोजन को लेकर आपने अधिकारियों से बातचीत की, उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है और आपकी क्या उम्मीदें हैं?
9: पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है और उन्होंने हमें आमंत्रित किया है कि अभी ऑस्ट्रेलिया की नई कल्चर पॉलिसी फ्रेम हो रही है, तो उन्होंने उसमें हमारे सजेशंस को मांगा है और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हम अपने सजेशंस को वहाँ कंसिडरेशन के लिए सबमिट कर देंगे। उसी तरह हमने विक्टोरिया गवर्नमेंट के भी मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में बात की है। अभी चूंकि ये बहुत इनिशियल लेवल पे है, अभी स्टार्टिंग हुआ है, वो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं पीटीएन गेम्स क्या है, उनका आगे क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, और मुझे लगता है हम बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कन्विंस करने का प्रयास करेंगे और वो कन्विंस होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ।
2: एक आखिरी सवाल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सांस्कृतिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं, खेलों की बात करें तो हाल ही में कबड्डी जैसे उदाहरण भी सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि मॉडर्न पीटीएन गेम्स दोनों देशों को और करीब ला सकता है?
9: बिल्कुल, मैंने कहा कि कल्चर और ट्रेडिशनल गेम्स एक बहुत बड़ी कल्चरल डिप्लोमेसी का एक माध्यम है। आप कबड्डी भी अगर बात करें, ये इंडिजिनस गेम्स में आता है और कबड्डी भी हमारा एक पार्ट है। इसके अलावा जैसे हमने बताया टग ऑफ वार है, मड रेसलिंग है, यहाँ की ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल को हम लोग ले सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल अभी ओलंपिक्स का हिस्सा नहीं है, ऐसे ही हम रग्बी को भी ले सकते हैं। बहुत सारे गेम्स को अडॉप्ट किया जा सकता है और मैं ऐसा समझता हूँ कि नॉट भारत और ऑस्ट्रेलिया, पीटीएन गेम्स के माध्यम से हम पूरे विश्व में एक विश्व शांति का मैसेज यहाँ से भेज सकते हैं और हर देश में को कला और संस्कृति के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं।
2: SBS हिंदी पर ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने।

0: के लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
1: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है। एलेक्सा, गूगल होम या एप्पल स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताज़ा खबरें, विचार और कहानियाँ SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
0: अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार, SBS वर्ल्ड मूवीज पर। देखिए सातों दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
2: SBS South Asian plays hit

0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: SBS News इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS News इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं।
2: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर, हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
1: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
3: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है एड ब्रेक के बाद, और आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त हो चुका है एक गाने का वक्त, लेकिन गाने से पहले एक बार फिर से सवाल दोहराते हैं कि बचपन की एक वो कौन सी चीज़ है जो आप बहुत मिस करते हैं। 04397997667 पर हमें अपना संदेश भेजिए और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक गाना सुनते हैं और गाने के बाद वापस आकर कुछ रिपोर्ट्स और कुछ और गाने। बने रहिए SBS हिंदी के साथ।

0: एस बी एस हिंदी पर आप सुन रहे हैं एक और शो जिस मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। मेरा नाम है नबील और आगे बढ़ते हैं और इस वक्त अगली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। आज मुलाकात कर रहे हैं मेलबर्न के जयंत पांडे के साथ जो अब एक फोटोग्राफर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और इनसे बातचीत करी एस बी एस हिंदी की तरफ से अनीता ब्रार ने। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: SBS हिंदी पर मैं हूं आपके साथ अनीता बरार। अब फोटो खींचना तो हम सभी को अच्छा लगता है और अगर आपने उसकी तकनीक को भी सीख लिया तो हो सकता है कि आपका ये शौक आपको किसी पेशेवर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दे। तो आइए आज मुलाकात करते हैं एक ऐसे ही व्यक्ति के साथ में जिन्होंने फोटोग्राफी को एक शौक की तरह शुरू किया क्योंकि उनके हाथ लग गया एक कैमरा, लेकिन जब उन्होंने तकनीक सीख ली तो वो जा पहुंचे ग्लोबल मंच पर। मुलाकात करते हैं जयंत पांडे जी के साथ।
2: नमस्ते जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार।
3: नमस्ते अनीता जी।
2: जयंत जी, आपसे तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आप इस वर्ष की शुरुआत में लॉस वेगस गए ऑफिशियल फोटोग्राफर फॉर एशिया पैसिफिक डेलीगेशन एट CES 2026, तो भी जानना चाहूंगी कि ये क्या इवेंट था।
3: सो CES 2026 इज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो होता है जो वर्ल्ड का बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक शो हर साल होता है। हाँ। जहाँ पे सब नए इन्वेंशंस अपकमिंग टेक्नोलॉजी जो आता है उसके बारे में एग्जिबिट होता है। स्टार्टअप कंपनीज वहाँ आती है, वो दिखाते कि हम क्या कर सकते हैं। मेरा काम यहाँ था कि हमारा एशिया पैसिफिक डेलीगेशन को रिप्रेजेंट करना था, उनको वो मंच पे दिखाना था वो क्या कर रहे हैं। हम यहाँ से सब 12 लोग गए थे। 5 दिन का इवेंट मुझे कैमरे में कैप्चर करना था कि हमने कहाँ से कहाँ गए।
2: आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए जब भी हम कोई एक फोटो खींचते हैं तो हर क्लिक के पीछे एक नजरिया तो होता है हमारा। कहा जाता है कि जंगल की खामोशी को भी कैमरा कैद कर लेता है। बात करेंगे आपके करियर के ऊपर कि फोटोग्राफी का शौक आपको कैसे शुरू हुआ था।
3: फोटोग्राफी का शौक बचपन से शुरू हुआ था। जब मैं छोटा था 1980s में जी, मेरे अंकल US से दिवाली के लिए आए थे, उन्होंने मुझे फिल्म वाला कैमरा तब भेंट दिया था। उन्होंने कहा कि जयंत ये लो कैमरा और एक बैग भर के रोल दिए थे, 50-60 कुछ रोल होंगे। उन्होंने कहा कि कितने चाहे उतने फोटो निकालो बट अपने

0: जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी किसी ने देना और फिर उसके साथ वो जाके निभाना इज वेरी फर्स्ट स्टेप, इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब मैं इवेंट कैप्चर करता हूँ, कोई भी मोमेंट कैप्चर करता हूँ, तो मेरे मन में यही होता है कि इस मौके को मैं किस कितने कितने एंगल से कैप्चर करूँ. बिकॉज जब आप बात करते हो स्टेज पे तो वो सामने से आना चाहिए, बट बात करते करते सामने जो ऑडियंस है वो भी मुझे दिखाना होता है. सो ऑडियंस के पीछे जाके मैं दिखाता हूँ कि सामने कौन बात कर रहा है. सो जो लोग वहाँ नहीं है उनको पता चलता है कि वो कितना बड़ा इवेंट था. जैसा मोमेंट है वैसे लेंस मैं कैप्चर करता हूँ. अगर मैं जो लोग वहाँ पे एक में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो मैं दूर खड़े रह के उनकी मोमेंट्स कैप्चर करता हूँ. बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम उनके अगर पूछेंगे फोटो के लिए खड़े रहो तो उनका चेहरे का हावभाव बदल जाता है. पर अगर मैं दूर से फोटो ले लूँ तो वो जो बात कर रहे होते हैं उनके नेचुरल एक्सप्रेशन जो बाहर आते हैं वो मैं कैप्चर करने का प्रयास करता हूँ.
1: हमारे लिए तो ये बहुत गर्व की बात थी। आगे आप क्या करना चाहते हैं और क्या कोई प्रोजेक्ट है आपके माइंड में?
0: अभी तो मैं बहुत सारे इवेंट्स करते जा रहा
1: जी
0: हूँ. मैं हमेशा सीखता हूँ, फोटोग्राफी मैं हमेशा सीख रहा हूँ कॉन्स्टेंटली. और मैं एम्बिशन ऐसा है कि मुझे नेशनल ज्योग्राफिक का फोटोग्राफर बनना है या शायद वाइल्ड लाइफ का फोटो ले सकूँ. सो मेरा वो मेरा बड़ा एम्बिशन है. वाइल्ड इन द नेचुरल हैबिटेट में जो होते हैं तो उनका वैसा फोटो निकालना है.
1: जयंत जी, यही कहूंगी कि बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर कि एक बचपन में जो एक छोटा सा कैमरा आपके हाथ में आया और उसने आपको इन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, जब शायद उस समय आपने नहीं सोचा होगा।
0: बराबर कहा आपने, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि एक छोटा कैमरा बचपन जो मेरे हाथ में था वो आज मेरी इस कला को कहाँ कहाँ पहुँचा देगा.
1: क्या
0: तो
1: बात है,
0: ये मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमें हमारी जिज्ञासा को, हमारी हॉबी को छुपा के रखना नहीं चाहिए.
1: जी
0: श्रोताओं को यही कहना चाहता हूँ कि चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो टू अर्न मनी, बट अगर आपके अंदर कोई जिज्ञासा है कि मुझे ये करने की इच्छा थी तो इच्छा को मत मारो. आप उसको बाहर निकालो और जाके कुछ उस चीज़ पर काम करो, बिकॉज आपको पता नहीं कि वो आपको कहाँ ले जा सकता है.
1: क्या बात है, बहुत अच्छी आपने सलाह दी है। एक तरह से कहूँ कि हमारी बातचीत का मूल मंत्र यही आ गया, अवसर कभी भी मिल जाता है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना चाहूंगी जैन जी कि आप हमारे साथ आए और अपनी आपने इस उपलब्धि को साझा किया।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच में बुलाने के लिए.

0: SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
1: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर। SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
0: अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। SBS न्यूज इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS न्यूज इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं। पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर, देखिए सातों दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
1: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
2: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
3: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और

0: एड ब्रेक के बाद अब एक आखिरी रिपोर्ट का वक्त हो गया है और फिर कुछ गाने आपके लिए प्ले करेंगे। जो अगली रिपोर्ट है ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं फैसल फरीद, और ये लेकर आ रहे हैं आज मुंबई के पृथ्वी राज की कहानी, जो एक बड़ा ही अनोखा काम करते हैं। वो लोगों की बातें और उनके दुख सुनते हैं और इसके लिए शुल्क भी लेते हैं। सुनने में ये अलग लग सकता है लेकिन लोग उनके पास अपनी भावनाएँ साझा करने आते हैं। ये कहानी सिर्फ एक अनोखे विचार की नहीं बल्कि सवाल की भी है कि क्या आज की व्यस्त जिंदगी में हम एक दूसरे के लिए समय निकालना भूलते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं फैसल फरीद की ये रिपोर्ट।
1: मुंबई में पृथ्वीराज जी एक अनोखा कार्य करते हैं। वो दूसरों का दुख बांटते हैं और जी हाँ, इस बात के पैसे भी लेते हैं। छोटा दुख 250 रुपये, बड़ा दुख 500 रुपये और साथ में रोने के 1000 रुपये। सुनने में अजीब लगे लेकिन वो यही करते हैं। भीड़ भाड़ वाले एरिया में वो अपना बैनर लेकर खड़े हो जाते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। यकीन मानिए, लोग उनके पास आते भी हैं अपना दुख साझा करने के लिए। पैसे दिए और अपना दुख बताया। पृथ्वीराज उनको अपनी तरफ से सलाह भी देते हैं। वैसे तो इस काम के लिए क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, लोग उनसे सेशन बुक करवाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज जी का ये मॉडल शायद अपने आप में एक अनूठा है। मतलब पैसे दीजिए, दुख बांटिए। जिंदगी की भागदौड़ में आजकल हर कोई परेशान है। हर कोई अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है। इसमें उसको कभी दुख, उदासी, डिप्रेशन और यहाँ तक जिंदगी से हार भी महसूस होती है। ऐसे में उसको ज़रूरत होती है कि वो अपनी बात किससे कहे, कौन उसके दुख सुनेगा, कौन उसको अपना कंधा देगा जिस पर वो सर रख कर रो सके। शायद पृथ्वीराज जी ने कुछ ऐसा ही सोचा। वैसे तो वो राजस्थान के रहने वाले हैं लेकिन वो अब मुंबई आ गए हैं। कैसे शुरुआत करी उन्होंने, वे बताते हैं।
2: मेरा नाम पृथ्वीराज पूनमचंद बोहरा है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। सर जी, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और क्वालिफिकेशन मैंने सर ग्रेजुएशन की है फिलोसफी के अंदर, हिस्ट्री पोलिटिकल फिलोसफी। और है ना सर, वो कॉन्सेप्ट तो दिमाग में ऐसा आया है कि लॉकडाउन के बाद में क्या हर आदमी मतलब ना फैमिली से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कैरियर से संबंधित, बिजनेस से संबंधित हर आदमी को कुछ ना कुछ मतलब इशू आ रहा था। और मेरा एक्चुअली क्या है कि मैं अधिक से अधिक लोगों की बातें क्या ज़्यादा सर सुनता हूँ, कोई भी किसी भी बात को मैं काटता नहीं। तो मैं अगर वहाँ राजस्थान में भी था ना तो लोगों को मैं ना एडवाइस भी साथ में देता था। सुनने के बाद में काफ़ी लोग मेरे पास में आते थे कि तो भाई यार इसका ये ऐसी सिचुएशन आ गई है तो अब क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और इससे अपन बाहर कैसे निकल सकते, तो वो रास्ता देने में मैं मास्टर था। और उसके अलावा मैंने ना फिलोसफी और साइकोलॉजी लोगों के डिपार्टमेंट के साथ में मैंने अधिक से अधिक समय बिताया है तो उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे मतलब ना गाइड भी मिलता गया और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मतलब मिलते गए।
1: ये कार उन्होंने एकदम से शुरू नहीं कर दिया। फिलॉसफी में ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मुंबई की राह पकड़ी और यहाँ आकर देखा कि लोग परेशान रहते हैं, हर कोई चाहता है कि उसकी बात कोई सुन ले, और फिर पृथ्वीराज जी ने यह शुरू किया। इसके लिए उन्होंने बाकायदा रेट चार्ट भी लगा दिया और लोग आने भी लगे।
2: फिर अभी क्या, अभी 1.5-2 साल से क्या ना मैं चलो एक बार है ना अपन जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पर क्या ना ग्रोथ नहीं होते। हम कहीं पर भी रहें, समाज में रहें, परिवार में रहें, जब तक आप अपने मतलब कंफर्ट जोन को अगर बाहर नहीं निकालेंगे ना तो आपकी तरक्की कहीं नहीं हो सकती। क्या काफ़ी लोगों ने मुझे डराया भी था कि यार ये बड़े शहर में मत जा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, डराया धमकाया भी था, लेकिन मैंने सबकी ना सुनने के बाद में मैं मुंबई आ गया, अकेले ही आ गया और मुंबई आकर मैंने ये सर्वाइवल किया। और फिर मैं दिमाग में ऐसा मतलब चल ही रहा था कि दिमाग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं लिखाऊंगा जिससे मतलब लोगों को मतलब उसको हेल्प भी मिलेगी, गाइड भी मिलेगी और मानवता और समाज कल्याण के लिए भी मैं काम करूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा, चाहे दुख है, समस्या है, परेशानी, कठिनाई है, डिप्रेशन में भी आ जाएगा कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं हर व्यक्ति की मतलब बात सुनूंगा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, हर आदमी चाहे वो कोई भी तबके का हुआ, चाहे बड़े आदमी का हो, उम्र दराज का आदमी मेरे साथ होती है तो भी मैं उनको क्लियर करता हूँ। मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि मैं उनकी बातों को और उनके मतलब उनको कोई भी इशू आ गया तो मैं उसको क्लियर करने की पूरी क्षमता रखता हूँ। मेरे पास में एक्सपीरियंस भी है, गाइड भी है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। सर जी, मैं कोई अंधविश्वास नहीं, मैं जी सर, मैं ना जहाँ पर पब्लिक का क्राउड होता ना भीड़ भाड़ एरिया वहाँ पर मैं जाता हूँ, या तो मॉर्निंग में सवेरे या शाम को जहाँ पर पब्लिक आती है, जैसे जूहू पार्टी हो गया मरीन ड्राइव हो गया, दादर चौपाटी हो गया, या जहाँ रेलवे स्टेशन हो गया, या कोई मॉल है मॉल के आसपास हो गया, तो आते हैं लोग मेरे से पूछते हैं कि ये क्या है, कैसे सिस्टम, ये कैसे कैसे काम करता है, तो मैं उनको पूरा क्लियर करता हूँ। लोग आते हैं हंसते भी है, कोई पूछते तो देखकर यार ये क्या है, फिर भी मैं उनको बोलता हूँ आप हिम्मत मत हारिए, मैं आपको गाइड करूंगा, आपको मैं वापस से जीरो से वापस शुरुआत कर दूंगा, जीरो से वापस धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप, फैमिली में अगर ग्रोथ नहीं हो रहा क्योंकि आजकल क्या खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है और कमाई हो गई है कम, इसकी वजह से आदमी मेंटली इश्यू बहुत हो गया।
1: सब कुछ इतना आसान भी नहीं है, लोग इन पर हंसते भी हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग कमेंट्स करते हैं, पुलिस भी इनको पकड़ कर ले गई। लोग ये भी सोचते हैं कि ये एकदम से कैसे रो सकते हैं, पुलिस के सामने इन्होंने रो कर दिखाया भी। खैर फिलहाल पृथ्वीराज आपको मुंबई के किसी भीड़ वाले एरिया में अपना बैनर लिए मिल सकते हैं आपका दुख बांटने के लिए।
2: ऐसी सिचुएशन आती है कि आदमी है ना इतने मतलब इंसान इतना मतलब डिस्टर्ब होंगे ना, मैं भी मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब एक बार ये हुआ था जू चौपाटी के यहाँ पर कोई पुलिस वाला, तो वहाँ पर आ गया था पुलिस वाला, तो पहले जू चौपाटी पर उन्होंने मुझे अंदर बिठा दिया रिपोर्टर को और अपना कैमरा मैन को, भैया ये तेरा क्या कॉन्सेप्ट है, कैसा क्या काम करता है। फिर वो एसीपी को डीएसपी के थ्री स्टार वाले उन्होंने बोला मुझे 1,000 वाले पहले हमें रोके बता तब मैं तुझे जानूंगा, तब मैं उनको 2-5 दिन में उनको पूरा पेयर दिया भाई आठ मतलब रोके दिखाया, तब उसने बोला कि तेरा कॉन्सेप्ट अच्छा है। उनके फोन में उन्होंने मेरा वीडियो जो वायरल बना था जी चौपाटी वाला, उन्होंने खुद मुझे बोला कि देख हम लोग तेरे को 2 महीने से ढूंढ रहे थे लेकिन तू आज यहाँ पर चांस में आ गया, वो अच्छा काम करा, ये मेरा नंबर ले, मेरा नंबर ले, अगर तेरे को कभी कुछ भी बॉम्बे को तकलीफ हो तो हम बैठे। तो
1: ये कहानी शायद आपको मजाक लगे लेकिन सोचिए अब हम क्या इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने करीबी, अपने दोस्त, अपने परिवार, रिश्तेदार को इतना भी समय नहीं दे पा रहे हैं कि वे अपना दुख साझा करें। एक दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है उससे हम लोग बिल्कुल अनजान हैं, एक ही छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे के दिल का हाल नहीं जान पा रहे हैं। इसीलिए पृथ्वीराज जी जैसे लोग भले अनजान सही लेकिन समय तो दे रहे हैं, वरना हम लोग तो सिर्फ छुपाना जानते हैं। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, उस शख्स के गम का कोई अंदाजा लगाए जिसको कभी रोते हुए देखा ना किसी ने। लखनऊ से फैसल फरीद।
0: SBS हिंदी पर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शो में बने रहने के लिए। आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं जिसमें हम आपके लिए 2 बैक टू बैक गाने प्ले करेंगे और आपको छोड़ जाएंगे इन गानों के साथ एक खूबसूरत शाम के लिए। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक नए शो में, एक नए दिन, एक नई शाम में। तब तक बने रहिए SBS हिंदी पर और हमें फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करिए, हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर लाइक करिए जहाँ हम आपके लिए ढेर सारे कम्युनिटी स्टोरीज़ और इवेंट्स की फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब लेकर आते हैं। तो बने रहिए SBS हिंदी के साथ और मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

सितारे जैसी होशियारी ये फिजूल है, तेरा ख्याल ठेकेदार है तू वक्त का, बदल के रहता है ये वक्त का उसूल है। हरकतों पे कब तलक मेरी नजर रखेगा तू, करते करते पहरेदारी एक दिन थकेगा तू। मैं मगर नहीं थकूंगा, फैसला ये है किया गलत को भी सही

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा

घर के सजाएंगे। रात से हो गया दिन, पीके वुड का कोला जिन, बेबी बॉडी को कर ले स्पिन, जैसे मछली तड़पे पानी बिन, तिनक तिनक धिन।

0: SBS South Asian.
1: Music MG. तुझे बीच सड़क में रोके दूंगा मौके देखने के मेरे शो के It's okay, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़कियों के।

0: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।
1: Ayo, G-Funk.